जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अरसूम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए आप हमारा प्रोग्राम को सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम सुनाई देता है। तो चलिए यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज रविवार की सुबह के प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त

सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन के आवास में सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रविवार के सुबह की प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। अगला भजन अनूप जलोथा जी की आवाज

0: अनूप जलोत्रा जी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अनूप जलोत्रा के बाद पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं आज रविवार की भजन यात्रा प्रोग्राम में।
1: भगवत प्रेमी सज्जनों, प्रस्तुत भजन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी मधुबन में झूला झूल रहे हैं और राधा की सखियां व कन्हैया के सखा ग्वाल बाल सभी मिलकर झोटा दे रहे हैं। इस मनोहर दृश्य को देखकर भक्त अपने हृदय के भावों को किस तरह से व्यक्त कर रहा है, सुनिए।

की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार मिलकर ये सुंदर और सुंदर सा भजन को सुनते हैं। आज के प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है सोनू निगम की आवाज में सोनू

शरण जी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। अब की बार सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं। एक सुंदर सा श्री कृष्ण भजन पेश किया जा रहा है।

लिए पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलते हैं गुरमीत और मीना की।

सुनना कि आवाज में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं आज रविवार के भजन यात्रा प्रोग्राम में। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और खासतौर पर सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज रविवार का दिन है, 2 अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन पेश

संगीतों का प्रोग्राम की ओर और पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। यहां से हम आपको ले चलते हैं पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप जरूर सुनते ही रहें। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 03226611 है।

आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हूँ। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। अब की बार प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए जरूर आप सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में मिलकर सुनते हैं प्रसून मुखर्जी की आवाज में हेमंत कुमार का एक खास गाया हुआ गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है।

मुखर्जी की आवाज में ये गाना पेश की गई हेमंत कुमार का खास गाया हुआ गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए द माइटी मुकेश प्रोग्राम में। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नख़मे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03226666611। चले आपकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुनते ही रहना।
1: मैं जिंदगी

रेडियो SBS के जरिए। पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में आशा भोसले एन मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं।

0: होते होते होते प्यार होता है।
1: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं, उसी खास फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे मुकेश और लता जी की आवाज में एक गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

मुकेश और लता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं फरमाइशी इश्तिहारे। जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी कामोकाज आपको पेश करवाना है, सस्ती दामों में आपके हर एक कामोकाज किया जा रहा है। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए 03-265-65-60 टेलीफोन नंबर होता है। मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर

0: आवाज में गाना बस पेश की गई
1: कहीं देखा है
0: SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना।

De man with the African voice, Kishore Kumar. और खासतौर पर लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, दिल की बातें दिल ही जाने।

और खासतौर पर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर और लता जी की आवाज में एक और काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में

किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में गाना बस भी इसके गए फिर जन्म लेंगे हम। काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई। पुरानी नगमे की प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो SBS के जरिए, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है मुकेश एंड लता प्रोग्राम में। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है मुकेश एंड लता जी की आवाज में।

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम ये है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। महेंद्र कपूर आपकी बार प्रोग्राम में। महेंद्र कपूर

दीवानी फिल्म का नाम दो कदम तुम भी चलो। रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम एक दूजे के लिए। गाना का बोल है हम बने तुम बने, बने हैं बस एक दूजे के लिए।

की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए। हम बने तुम बने बस बने हैं एक दूजे के लिए। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहरुत्र हॉलैंड से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में सालों से बस पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार और अब की बार हम आपको ले चलेंगे फिल्म जमीर की ओर।

आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं आशा भोसले की आवाज में, ये गाना और फिल्म का नाम है जहरीला इंसान।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए, फिल्म का नाम जहरीला इंसान। आशा जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में, चलिए मोहम्मद रफी एंड लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। मोहम्मद रफी

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था सबक, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलेंगे। अगली बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार की आवाज में गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में महेंद्र कपूर एंड लता मंगेशकर की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम होगा

महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था रूप तेरा मस्ताना। चलिए आज की प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

और चंद्रानी मुखर्जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रोमित है। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं फिल्म दारिंदा की ओर। यशुदास और कंचन की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

कीर्ति, कीर्ति, आखिर मैंने तुम्हें पाई लिया। कीर्ति, मैंने तुम्हें पाई लिया। तुम नहीं जानती कीर्ति, तुम्हारे लिए मेरी आत्मा कितने सालों से भटक रही थी। तुम्हारे बगैर जिंदगी का एक एक पल ऐसे गुजरा है जैसे सदियां गुजर गई हो, हजारों साल बीत गए हो। लेकिन कीर्ति, अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता।

सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम होगा धूप। हरिहरन और श्रेया जी की आवाज में अब की बार गाना पेश किया जा रहा है, हरिहरन एंड श्रेया जी की आवाज में। फिल्म का नाम धूप, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

हरि हरन और शरिया जी के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तुलसी कुमार और हिमेश हरी शमिया प्रोग्राम में होगा।

हिमेश रेशमिया एंड तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरों में थे कि गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए कुमार सानू और अलका की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में पेश किया

ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-22-66-11 और रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। अलका एंड सोनू निगम अब की बार प्रोग्राम में दिल मांगे मोर, फिल्म का नाम दिल मांगे मोर।

0: रेडियो वेस में इसकी सर ये सोनू निगम और अलका जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम रेडियो SBS का बस सुनते हैं, जरूर और जरूर इस प्रोग्राम को सुनते ही रहना। चले कुमार सानू एन कविता कृष्णमूर्ति की ओर।
1: देखा है तुझे चैन नहीं आता है, इस जमाने में मुझे कुछ और नहीं भाता है, दिल मेरा चाहत है।

ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा। उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए अतीफ असलम और सुमेधा प्रोग्राम में।

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। लाइव के जरिए प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अलका जेके आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

सोनू निगम और खासतौर श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले अब की बार आपकी सेवा में ये गाना पेश किया जा रहा है, अक्रोश फिल्म का नाम।

अलका जी के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चलिए आज की इस प्रोग्राम में गाना है द फिल्म आंखों में तुम हो, कुमार सानू और अलका जी के आवास में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

सलाम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं के की आवाज में। आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनवालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर मौसमी समाचार और आपका दाह हॉरोस्कोप होता है।

प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आज की प्रोग्राम में।

दिल जो ना कह सका, फिल्म का नाम, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए रेडियो SBS की जरिए। चले गाना आतिफ असलम की आवाज में पेश किया जा रहा है।

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में अबकी बार कुमार सानू और अलका जी की आवाज में एक गाना पेश किया जाए।

Anu avre halka ji ki awaz mein ye gana bas program pe peesh ki gayi aap sabhi aur sabhi sunne walon ki seva mein aasra umeed hai ki gana aap sabhi ne suna aur behad pasand kiya hai. एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे जो अब की बार पेश किया जा रहा है उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में.

श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

मुझको छेड़ो, ऐसे न मुझको देखो, जो देखना ही कुछ तुमको है तो फिर मेरे दिल को देखो। हम प्यार के हैं राही, दिल प्यार की है मंजिल, किस काम की ये महफिल, दिल से न मिला जो दिल, होगा मिलना हमारा मुश्किल, होगा मिलना हमारा मुश्किल, होगा मिलना।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म का नाम, कमल खान, कुमार सानू, अलका, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज में। और गाना का बोल है ओ प्रिया ओ प्रिया, कहीं प्यार ना हो जाए।

जुबिन एन नीति मोहन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए 2-32-62-66-11 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में।

ये फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और चले अब की बार कुमार सानू एनाल का जी की ओर। किसी से तुम प्यार करो कहीं

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए है। आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

किशोर कुमार के आवाज में ओपनिंग नंबर भी आप सुन रहे हैं हमारा हिस्सा की प्रोग्राम से। मैं हूँ आपका खिदमत सर ग्लेन, सुनते रहना हमारा प्रोग्राम यहाँ से ओ फॉर रेडियो SBS।

जब सामने तू आ जाते हैं, आशा भोसले साथ में जगदीश सिंह के आवाज में। अभी आप सुनते हैं

इसी नंबर के बाद सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स न्यूज फरके से फमासी और उसके बाद में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओ फॉर रेडियो SBS

तीन बजकर इस वक्त 5 मिनट गुजर रहा है, 5 मिनट 9 बज 3। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहना यहाँ से ओवर रेडियो SBS, और वो भी हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम।

रेमन रामनारायण साथ में राकेश यानकरन के वास में सुनते रहना 032-62-66-11 स्टूडियो का तार का नंबर और वैसे हर एक इन्फो जाने की फरमाइशी सिहार या तो मृत्यु समाचार के लिए 24 घंटा लगातार जल्द 62-65-66-60 आप तार कीजिए।

रेमन रामनारायण साथ में, रकीस यंकरन के वास में भी आप सुनते हैं। क्रिसम छेदी के वास में।

चलो नहीं जाना, अखिया मिला के जिया भरवा के। क्रिस्वम क्रिस्वम छेदी के वास में अभी आप सुन रहे थे। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम लाइव के जरिए ओवर रेडियो एसबीएस।

दवेंद्र सिंह शिवनाथ के वास में सुनते रहना गिरधारी स्त्रात, गिरधारी स्त्रात फ्लोइटन फ्लोइटर वायद से राजन गिरधारी का पसंद सुनते रहना।

के छेरो ना छेरो सवलिया हमार रेहाना रेहाना के वास में भी आप सुनते प्रोग्राम से, और अब की बात सुन रहे ना हरी दत्त जयराम के वास में।

0: के मार मार मछरिया नौवा,
1: मार मार मछरिया नौवा, ली है जाय बजरिया, ली है जाय बजरिया।
0: हरी दत्त जयराम के वास में अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम से
2: ओ मोरे सरिया के लगले।

देवानंद गत्तू के पास में अभी आप सुन रहे थे लाइव फ्रॉम द सिटी यूट्रेक्ट, यानी कि टेम्स ड्रिफ्ट नंबर 237 शहर यूट्रेक्ट केंद्र से ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS

चार बजकर इस वक्त 4 मिनट गुजर रहा है, 4 मिनट ओवर 4 बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS।

0: के बलम हो गयल गुलरी के फूल, संतोष गिसई के वास में। अभी आप सुनते प्रोग्राम से और अब की बार
1: काही जिलेबी का तरसूरी भौजी, बड़ा मजा रसगुल्ला पे।

बुलबुल के चोलिया पुराण संदीप बदलू के वास में सुनावे लागे रे विनोद रखन के वास में।

0: विनोद रखन के वास में के सुनावे लागे एक सुंदर सुगनवा सुनावे लागे। अभी आप सुनते दविंद्र सिंह शिवनाथ के वास में
1: कोई के जोड़ी पतरी पतरी कोई के जोड़ी
0: रोटरडम से सीला की पसंद सुनते रहना।

दविंदर सिंह शिवनाथ के पास में। अभी आप सुनते प्रोग्राम से के शेली ग्याल हवाई कुकुदीना रोटरडम, रोटरडम से सीला, सीला की पसंद। अभी आप सुनते प्रोग्राम से।

हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ऑफ द कमर्शियल रेडियो SBS और वो भी शहरी तरह के अंदर से। जॉयस हैरिस के आवाज में सुनते रहना के मोरवा बोले।

हैरोल्ड राम कुमार के वॉइस में भी आप सुन रहे थे मोतीमाला, मोतीमाला भोला सिंह के वॉइस में सुनते रहना। के दिल की कहानी सुन ले, मोतीमाला भोला सिंह के वास में।

राकेश यंकरन के पास में अभी आप सुन रहे थे और अब की बात हरी दत्त जयराम के पास

Inmiddels 2 minuten over 5. 5 बजकर इस वक्त 2 मिनट गुजर रहा है. बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS.

0: ए आगे आगे आगे आगे नाना चले और पीछे पीछे नानी नानी नानी मैशिप अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम से एक चटनी चटनी रिवाइवल के गजब भैल रामा
1: गजब भय
0: के समधनिया मोरे मोता लालता प्रसाद पूरन के वास में।

हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना लाइव के जरिए बैठक गाना, बोलो एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन वन एंड ओनली रेडियो SBS।

0: दविंदर सिंह शिवनाथ के पास में
1: सूते ना देवे,
0: के सूते ना देवे रात भर
1: देवे,
0: सूते ना देवे मुर्दन से डिंपल डिंपल की पसंद सुन रही ना।

रात भर सूते न देवे। वर्धन वर्धन से डिंपल की पसंद तभी आप सुनते प्रोग्राम से। रमेश चंद्र बिहारी के वास में।

कि आग लगे तन मन में, रमेश चंद्र बिहारी के पास में भी आप सुनते हैं रकीब रकीब वक्त हुसैन के पास में।

घड़ी अफसोस टूट जाती है, हिम्मत भी उस घड़ी के देते हैं अहले छोड़, के देते हैं अहले छोड़, मोहब्बत भी उस घड़ी मुंह अपना फेर लेती है, खलकत भी उस

दोस्तों होशियार आदमी को न समझाओ दोस्तों, ऐसा ना हो के फिर कहीं पछतावो दोस्तों। नाज़ों की ना

कि कोई फंसा हुआ है मोहब्बत के जाल में। रकीब वगी सुजैन और साथ के पास में अभी आप सुन रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। आज की बैठक गाना प्रोग्राम समाप्त होने पर आते हैं।

समाप्त होने पर आया आज की बैठक गाना प्रोग्राम। यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ऑफ द कमर्शियल रेडियो SBS। अभी सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल न्यूज फॉर के से फमासी और उसके बाद में आज आंचलिक के जरिए प्रोग्राम सुनते रहना। मैं था आप ही का खिदमुजार ग्लेन। हमारे तरफ से आप सब सभी को एक शुभ शाम कहा जा रहा है। मिलेंगे फिर आने वाले रविवार को शाम में।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशली रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिट इज यू आर जे अंशली रामलाल दू फा हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio naar 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आपने सुना ये बेहतरीन गाना मुकेश जी की आवाज में फिल्म श्री 420 से, और अब आप सुनिए फिल्म आवारा से। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की, लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए बेहतरीन गाना।

पहला प्यार अरमान मलिक की आवाज में आपने सुना फिल्म कबीर सिंह से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में फिल्म आजाद से है। लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए कितना हसी है ये मौसम।

Radio SBS luister je via de website www.radiosbs.nl. Wilt u reageren, kan het altijd. Bel maar gerust naar de studio met 032-62-66-11. En voor alle andere info kun je altijd bellen met 032-65-65-60. Aage bhi jaane na tu, piche bhi jaane na tu. Jo bhi hai, bas yahi ek pal hai. आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त से, और अब आप सुनिए फिल्म आज का अर्जुन से, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गोरी है कलाइयां, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां।

एली रे एली, क्या है ये पहेली? ऐसा वैसा कुछ तो हुआ है सहेली, ऐसा है द फिल्म यादें. En het volgende liedje in het programma Gitonkele her via Radio SBS is de titelsong van de film Janam Sam Chakaro, gezongen door Anu Malik en Hema Sardesai.

एक्वामैन फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के ये समाये नज़ारे खो गए हैं, हम कसम से तुम्हारे हो गए हैं। En uit de film Jurwa 2 komt gezongen door Anu Malik en Neha Kakkar. Uchiha Building 2.0.

का मेरा वस आर द फिल्म मुझे कुछ कहना है इन इसका सॉन्ग द अनुराधा श्रीराम आर द फिल्म अजनबी कॉम कसम से तेरी आंखें अय्यारे अय्या।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: फिल्म सुल्तान से आपने सुना प्रोग्राम गीतों के लहर में विशाल ददलानी और बादशाह की आवाज में बेबी को बेस पसंद है। और अब आप सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में फिल्म रईस से जालिमा।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

फिल्म बद्री की दुल्हनिया से आपने सुना तम्मा तम्मा अगेन, और अब आप सुनिए ढाकर फिल्म दंगल से रफ्तार और प्रीतम की आवाज में।

0: मुख्तार जी कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं
0: नहीं नहीं करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतर जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।

0: ये है रेडियो SBS, रेडियो SBS, रेडियो SBS।
1: दीदी आप उससे भूल जाइए, इसी में उसकी भलाई है। पापा नहीं मानेंगे।

0: है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मैं चल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.